आज है। जय जयवंती महल्ला नवा, राम भज जन्म श्रात है। कहूँ कहाँ बार बार, समझत न है क्यों गवार, बिनसत न

कौन गात होए है तेरी, एह जग मह राम नाम सो तौ नहीं सुन्यो कान, बिख्यन स्यों अतल भान मत नाहिन फेरी राव। मानस को जन्म लीना सिमरन नह निमख कीना, दारा सुख पयो दीना पगो परी बेरी। नानक जान कह पुकार सुपने ज्यों जग पसार,

अस्कृति महला पहला पाड़ पुस्तक संध्या बादं शल पूजस बगल समाधं मुख झूठ विपुखन सारं।

धोयतोती वस्त्रकपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै निःफलं तस्य जन्मस्य जावद

है जिन कल रखी धार, योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं तां ब्राह्मणा, खत्यरी शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं पराकृत है। सब सर्व शब्दं तां एक शब्दं, जे को जान सपेयो नानक तां को दास है। सोई निरंजन देयो एक कृष्णं तां सर्व देवा, देव देवा तां आत्मा। आत्मं सरिवास देवस जे कोई जान सपेयो नानक तां को दास है।

कतं च माता कतं च पिता कतं च बनता विनोद सुता कतं च प्रात मीत हित बंधव कतं च मोह कुटुंब अते कतं च चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं करोत रहांत संग भगवान सिमरण नानक लभदियं अच्युत तना त्रिगंत मात पिता स्नेहं त्रैग स्नेहं प्रांत बांधवः त्रैग स्नेहं बनता भिलास सुतः त्रैग स्नेहं गृहार्थकः साध सन संग स्नेहं साध संग स्नेहे सत्यं सुखं बसंत नानका मिथ्यांत देहं क्षीणांत बलनं वर्धांत जरुआ हत्यांत माया अत्यंत आसा अथित्य पवनं गणांत स्वासा पयान धर्मं पतांत मोह कूप दुर्लभ देहं तत आश्रं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काचकोटं रचांततोयं लेपनं रखत चरमणः नवांत द्वारं पीत रहतं बाय रूपं असथंबना गोविंद नामं नह स्मरंत अज्ञानी जानांत आस्थिरं दुर्लभ देहि उदरांत साध शरण नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत शुभंत तोयं अच्युत गुणज्ञं पूर्णं बहलो कृपाला गंभीरं ऊचै सर्वज्ञ अपारा प्रत्याप्रयं विश्राम चरणं अनाथ नाथ नानक शरणं मृगी पेखंत बदक प्रहारेण लख अवदह अहो जास रखेण गोपाल नानक रोम नाश द्यते बहु जतन करता बलवंतकारी सेवांत सूरा चतुर्दिश बिखमथान बसंत उच्च नान नह सिमरंत मरण कदांच होवंत आज्ञा भगवान पुरखा नानक कीर्ति सास अकरखते शब्द रतन शब्दं रतं हितं माया कीर्तं कली कर्म कृत्वा मिटांत तत्रागत परम मोहं भगवान रमणं सर्वत्र थान्यं दृष्ट तोयं अमोघ दर्शनं बसंत साध रसना हर हर हर हरे नानक प्रियं जाप जपना कटांत रूपं कटांत दीपं कटांत राव सस्यार नख्यतर गगनं कटांत बसुद्धा गेर तार शिखंडं कटांत बलना कटांत ललना सोत प्रांत हीतं कटांत कनक माया कटांत कनक मानक माया स्वरूपं नह कटांत केवल गोपाल अच्युत आश्रयं नानक साध जान नह बिलंब धर्मं बिलंब पापं दृढ़ांत नामं तजांत लोभं शरण संतं केल विखनाशं प्राप्तं धर्म लक्षण नानक जिह सो प्रसन्न माधव मृत मोहं अल्प बुद्धियं रचांत बनता विनोद साहं जौबन बह क्रम कनक कुंडलहा बचित्र मंदिर सुभंत वस्त्रा इत्यंत माया व्यापतं हे अच्युत शरण संत नानक ओ भगवाने नमः जन्मंगता मरणं हरखंगता सोगं अर्पोगंता रोगं ऊचंगता नीचं नाना सो मूचं
राजंगता मानं अवमानंगता हीनं प्रविरत मार्गं वरतांत विनाशनं गोविंद भजन साध संगेण आस्थिरं नानक भगवंत भजनासनं कृपांत हरियं मत तत ज्ञानं विगसीद बुधा कुशल थानं वस्यांतरिक्षं त्यागमानं शीतलांतरिध्यं दृढ़ स्थंत ज्ञानं रहांत जन्मं हर दर्श लीना बाजांत नानक शब्द बीणा कहांत बेदा गुणांत गुणिया सुणांत बाला बहुविध प्रकारा दृढ़ांत सुबिद्या हर हर कृपाला नाम दान जाचंत नानक दैन हार गुर गोपाला नह चिंता मात पित प्राता नह चिंता कछ लोक कहा नह चिंता बनता सुत मीता परविरत माया सन बंधना दयाल एक भगवान पुरखा नानक सर्ब जी प्रतपालका अनित वितं अनित चितं अनित आशा बहुविध प्रकारं अनित हेतं अहं बंधं परम माया मलिनं विकारं फिरांत जोन अनेक जठरागन न सम्रांत मलीन बुद्धियं हे गोविंद कर्त मया नानक पातत उदाहरण साध संगमा गिरांत गिर पतित पातालं जलांत दे दीप है वै स्वांतरा बहांत अगह तोयं तरंगं दुखांत ग्रह चिंता जन्मंगता मरणा अनिक साधनं नासिद्यते नानक अस्थंभं अस्थंभं अस्थंभं शब्द साध स्वजना कोर दुखयं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं मिटांत सगल स्मरांत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पसमं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत आग खंडना रिद बसंत पै पीत दूता कर्म करत महानिर्मला जन्म मरण रहांत सरोता सुख समूह अमोघ दर्शना

लभ्यते। अधरं तरं तारणा निर्धनं ताननाम नरहर अनाथ नाथ गोविंद बलहीन बल केशव। सर्वभूत दयाल अच्युत दीन बांधव दमोदर सर्वज्ञ पूर्ण पुरख भगवान भगत वशल करुणामय। काट काट बसंत वासुदेव पार ब्रह्म परमेश्वर जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नह विश्रांत नारायण नह समर्थं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरुषोत्तमं तव प्रसाद स्मृते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं भरण पोखण करंत जिया विश्राम साधन देवंत दानं सृजंत रतन जन्म चतर चेतना वरदान वरतांत सुख आनंद प्रसाद सिमरंत नानक हर हर हरे अनित रसना अनित रचना निर्मोहते दानं परा पूर्वीण पुचंते महीपते विपरीत बुद्धिं मार्त लोका नानक चिरंकाल दुख भोगते वृथान ग्रहं गोविंद जस सिमरन हृदंतर आरोग्यं महारोग्यं बेसिमृते करुणामया रमणं केवलं कीर्तनं सुधर्मं देहतारणा अमृत नाम नारायण नानक पीवतं संतना त्रिपते सहनशील संतं सममित्रस्य दुर्जना नानक भोजन अनेक प्रकारेण निंदक आबद होय अपतश्रुते तिरस्कार नह पवंत मान भंगना शोभाहीन नह पवंत।

निगमं नाच गुणग्रह नाम कीर्तना नाच राग रतन कंठं नह चंचल चतुर चातर भाग उदयम लभदयं सा माया नानक साध संग खल पंडित कंठ रमणीय राम राम माला हस ऊच प्रेम तारणी जिहि पाण जो उत्तम श्लोक उदरण नैन नंदनी गुरमंत्रहीन सहजो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्नना कुकरह सुकरह गर्तबह काकह सर्पना तुल खला चरणार बिंद भजन हृदयं नाम धारण कीर्तनं साध संगेण नानक नै दृष्टांत जमदूतन नाच दुर्लभं धनं रूपं नाच दुर्लभं स्वर्ग राजना नाच दुर्लभं भोजनं भिंजनं नाच दुर्लभं सवास अंबरा नाच दुर्लभं स्तोत मित्र प्रात बांधव नाच दुर्लभं बनता बिलासाय नाच दुर्लभं विद्या प्रवीणं नाच दुर्लभं चतुरो चंचला दुर्लभं एक भगवान नामा नानक लभदं साध संग कृपा प्रभं जात कतः ततः दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकः सर्वतर रमण गोविंद नानक लेप शेप ना लिप्यते बिखया पयंत अमृतं दृष्टा सखा सुवजना दुखियं पयंत सुखियं पय पीतं ता निरपवय थान बिहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर सर्वशील ममं शीलं सर्व पावन मम पावन सर्वकर्ताब ममं कर्ता नानक लेप शेप ना लिप्यते न शीतलं चंद्रदेवा न शीतलं बावन चंदना न शीतलं शीतरुतेन नानक शीतलं साध सुवजना मंत्रं रामं राम नामं ध्यानं सर्वतर पूर्णा ज्ञानं साम दुख सुखं जोगत निर्मल निर्वैरणा दयाल सर्वतर जिया पंच दोख विवर्जत है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है उपदेशं साम मित्र सत्रा भगवंत भगत पावनी पार निंदा न स्रोत श्रवण आप त्याग सगल कै रेण का खाट लखण पूर्ण पुरखा नानक नाम साध सुवजना अजाप घंत कंद मूलं बसंते समीप केहरा तत्र गते संसार नानक सोग हरखंग व्यापते चलं छिद्रं कोट बिघ्नं अपराधं कलबेख मलं परम मोह मान अपमानं मदं माया व्यापतं मित्र मृत जन्म परमांत नरक है अनेक पावन सिद्ध्यते निर्मलं साध संगं जपांत नानक गोपाल नामं रमांत गुण गोविंद नित प्रत तारण शरण स्वामी रमण शील परमेश्वर कर्ण कारण सम्राथा दान देत प्रभ पूर्ण निराश आस करण सगल अर्थ आलया गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक दुर्गम स्थान सुगम महादूत सर्व पू सुखण दुर्वचन भेद परम कासत पिशनं तासुरजना आस्थितं सोग हरकं पैकीणं ता निरपवय पै अठवियं महानगर बासं धर्म लखण प्रभ मया साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं हे अजित सूर संग्रामं अत बलना बहु मर्दना गण गंधर्व देव मनुखयं

पंखी बेमोहना, हार कर्ण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश व्रय। हे कामं नरक विश्रामं बहु जोनी परमावणा, चित हरखं चित हरणं त्रैलोक गम्यं जप तप शील विदारणा, अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावणा, तब पै विमुंचित साध संगम ओट नानक।

पार्श मानुख देहं मलिनं मजा रुदर दर गंदा नानक आथ गर्भेण अज्ञानो परमाणु पर जानत आकाशा दीप लो से खंडन गठेण नैन परेण नानक बिना साधु ना सिद्धयते जानो सत होवंतो मरण मरणो दृष्टेण मिथया कीर्त साथ चलंतो कीर्त साथ चलंथो पणंत नानक साध संगेण माया चित परमेण इष्ट मृत्यु मित्रेक बांधवा लभजंग साध संगेण नानक सुख अस्थान गोपाल भजन मैला गर संगेण निम बिरख से चंदना निकट बसंतो बांसो नानक अहं बुद्ध न बोहत गाथा गुम्फ गोपाल कथंग मथंग मान मर्दना हतंग पंच सत्रेण नानक हार बाणी प्रहारणा वचन साध सुख पन

पतर परजेण चढ़ियंग नह जड़ियंग पेड़ संपता नाम विहूण विखमता नानक बहंत जोन बासरो रैणी पावनी साध संगेण लवंतंग बडभागणा हर नाम गुण रमणंग नानक संसार सागर नह ब्यापना गाथा गूढ़ अपारंग समझणंग बिरला जन संसार काम तजणंग नानक गोविंद रमणंग साध संगमा सुमंत्र साध बचना कोट दोख बिनासना हर चरण कमल ध्यान नानक कुल समूह उदाहरणा सुंदर मंदर सैना जेण मध्य हर कीर्तना मुक्ति रमण गोविंद नानक लभदिंग वड भागना हार लभदो मित्र सुमितो बिदारण कदे न चितो जा का आस थैल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो आप जसंग मटंत सत पुत्रा सिमरत बरदय गुर दर्शना सिमरत बरदय गुर मंत्रणा प्रीतम भगवान अचुत नानक संसार सागर तारणा मरणं विसरणं गोविंद जीवनं हर नाम त्यावणा लवणं लवणं साध संगेण नानक हार पूर्व लिखियणा दसन बिहून पयंगं मंत्रं गारुडी निवारं व्याद उपाड़न संतं नानक लब्ध कर्मणा जाथ काथ रमणं शरणं सर्वतर जीयणा काथ लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुरदर्शना चरणार बिंद मान विद्यं सिद्यं सर्वकुशलणा गाथा गावंत नानक पव्यं परापूर्वणा शुभ वचन रमणं गवणं साध संगेण उदरणा संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभते वेद प्राण

राजा ही है। जिस कर वसिया कंत सावड भागणे, तिस बणिया हब शिंगार साई सहागणे। हौ सुती होई अचिंत मन आस पुराइया, हर हां जा कर आया कंत ता सब किश पाइया।

ऊपर बने आकाश तलय तरसो होती दह दिस चमक बीजल मुख कौ जो होती खोजत फिरों विदेश पियो कत पाई है हर हां जे मस्तक हो वह भाग तांदर्श समाई है डिठे सभ्य थाव नहीं तुद जे आ बदो पुरख बिदाता ता तू सोहया वसदी सगनिया पार अनूप रामदास पुर हर हां नानक कसमल जाए नाया रामदास सार चात्रक चित सुचित सो साजन चाहिए जिस संग लागे प्राण तिसे कौ आही है बन बन फिरत उदास बूंद जल कारणे हर हां त्यों हर जन मांग नाम नानक बलहारणे मित का चित अनूप मरम न जानिए गाहक गुणिया पार सो तत पछानिए चित

सोथान सुहावना सगले होए सुख हार नाम ते आवना जी करन जयकार निंदक मुए पाच साजन मन आनंद नानक नाम जप पावन पतत पुनीत कतह नहीं सेवी झूठा रंग खुआर कहाँ लग खेवी है हर चंदौरी पेख काहे सुख मानिया हर हाँ हौ

पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सम्मन जाओ इस प्रेम की दम केह होती साट रावण होते सो रंक नहि।

ज्ञान नवखंड वसुधा परम मूसन प्रेम परम कै गण एक कर कर्म मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीदे बांदे कमल मह पवर रहे लपटाए जप तप संजम हरख सुख मान महत हर गर्भ मूसन निमख प्रेम पर वार वार देओ सर्ब मूसन मर्म न जानई मरत हिरत संसार प्रेम परम न भेदेओ पुरजियो मिथ व्यवहार कब दब जब जारी है बिछरत प्रेम बेहाल मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल जाको प्रेम सुआउ है चरण चितव मन माहे नानक बिरे।

कमल जमाल कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार मूसन मगन राम श्याम खंड खंड कर हार मगन पयो प्र प्रेम श्याम सूद ना सिमरत अंग प्रगट पयो।

पहला तैत सर्वरड पहिले निवासा पाणी पावक जन है किया पंकज मोह पग नहीं चालय हम देखा तह डूबी अले मान एक न

प्रणवत नानकतन की शरणा जन तो नाही विसरया। आस्था महला पंजवा भई परापत।

गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पल मो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंजर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के बट बट की जाने, जब

रुक लग गया अबला जो है तैनू, रुक लग गया अबला जो है तैनू, और मैं देखो कट बंदिया तू नशे अल कट बंदिया, तू नशे अल कट बंदिया, तू नशे अल कट

संसारी औगुण छड के तू तर्क विकार सुभान है। वाहिगुरु हर का हाजिर है जिथे मर्जी अजमान है, जिथे मर्जी अजमान है। हसन मार्ग पाता नाल मिले, हट मार्ग पाता नाल

0: संसारी अवगुण छट के तू धर्म विकार कुमार धर्म विकार कुमार
1: रूप अच्छा तेरी आफ्रेन के हे मनुख हे प्राणी भी जे तू धर्म की कार करनी है ना किरत करनी है संसार के जिन्हें औगण ने ना चोरी ठगी हेरा फेरी सारे छड़ के धर्म की ऐसी कार कमाल ऐसी किरत कमाल है कि तेनू हर समय इं लगे कि ओ वाहिगुरु ओ अकाल पुरख हर समय तेरे नाल है हर समय वो अकाल पुरख तेरे अंग संग है ते वो ऐसा वाहिगुरु है ऐसा परमात्मा है हर थां ते हाजर है जिथे मर्जी अजमा के वेख लै भगत नामदेव जी उन्हां दे बारे आउंदा है कि उन्होंने हर एक जगह पत्ते पत्ते विच इत्थों तक कि कान्या विच भी उस प्रभु नूं वेखे जदों बाबा नामदेव जी नवी छपरी बनाउण वास्ते काने वढ़न वास्ते गए सी ना उदों जदों कान्या ने हाथ पाया कान्या दे उपर त्रेल सी जदों हाथ पाया ते त्रेल हेठां डिगी ते बाबा नामदेव जी ने कान्या नूं उत्थे ही छड्ड दित्ता है अपने मन नूं कहिंदे नामदेव इन्हां विच भी जान है ये रो पए ने ना वड छड्ड दे वापस आ गए एक ऐसी वार्ता आउंदी है कि बाबा नामदेव जी उन्हां दे घर साधु संत महात्मा आए उन्हां दे अग्गे भोजन परोसिया गया ते बाबा नामदेव जी भी भोजन लैके बैठे एक ऐसा कुत्ता आया कि बाबा नामदेव जी दीआं रोटियां लैके दौड़ पे बाबा नामदेव जी मगर मगर आवाज दे रहे ने गुरमुखा ठहर जा घ्यो नाल खावी सुक्कियां किस तरह खावेंगा घ्यो वाला छन्ना हाथ च है कुत्ता खलो गया ते जदों रोटियां घ्यो नाल भ्यों के मुंह दे नेड़े कीतियां ना बाबा जी ने तां साध संगत वो कुत्ता नहीं सी वो भगवान सी अपने भगत की वडियाई नूं वधाउणा सी वो कुत्ते तो भगवान का रूप धारण कर लिया प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु गुरु पातशाह ने आख्या साधु संत महात्मा भी आख रहे ने कि वो वाहिगुरु हर थां हाजर है जिथे मर्जी अजमा के वेख लै
0: वाहिगुरु हर थां हाजर है जिथे मर्जी अजमा लै मर्जी अजमा ल

गहरे तल तो प्रार्थना करे, अरदास करे कि वो प्रार्थना वो अरदास भी परमात्मा का रूप बन जाए, ईश्वर का रूप बन जाए। और जब कभी किसी ऐसे हृदय तो अरदास निकल दी है, वो अरदास ही प्रसाद बन जाती है, वो प्रार्थना ही परमात्मा बन जाती है। ऐसा मनुख कहता है, हे प्रभु तू मिले है मेरे प्रयास नाल नहीं, तू मिले है तेरा प्रसाद तेरी बख्श। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल, गाल न मिलियो सेव न मिलियो मिलियो आए अचिंता। तू गाल नाल नहीं मिलिया, मेरी मेहनत नाल नहीं मिलिया, तू मिले है तेरी रहमत तेरी बख्श। तू मेरे प्रयास नाल नहीं मिलिया, तेरा प्रसाद तेरी बख्श तेरी रहमत। जीरिया की पहले पदार्थां दी आशा दे दुख ही दुख, फिर जीन लग पिया परमात्मा दी आशा दे दुख ही दुख। सियाने मनुख नूं कुछ भेद दिखाई ना देता, मैं जी रहा सी पदार्थां दी आशा दे और कर्म कर रहा सी और कर्म ने दुख दिता। प्रार्थना परमात्मा की आस्था पैदा हुई और मैं करन लग पया कर्म, हर कर्म ने थकाया हर कर्म ने तोड़या हर कर्म ने निराश किया। लेकिन एक सही मार्ग है, अगर अरदास पैदा हो जाए प्रार्थना पैदा हो जाए तो ओ कर्म कांड तो थकया होया मनुख, प्रयास कर करके थकया होया मनुख जब अरदास तक पहुंचता है, कर्म कर करके थकया होया मनुख जब प्रार्थना तक पहुंचता है, कि जैसे प्रार्थना दे लीन होके जब प्रार्थना का रूप हो जाता है, वही प्रार्थना परमात्मा का रूप हो जाती है, वही दुआ खुदा बन जाती है, वही अरदास प्रसाद बन जाती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सारी मनुखता नूं सूझ बूझ दें, गहरे तल चों अरदास निकले ताकि अरदास ही प्रसाद बन जाए, प्रार्थना ही परमात्मा बन जाए। और जीवन उस दिन धन धन हो जाता है जिस दिन दुआ खुदा बन जाती है, प्रार्थना परमात्मा बन जाती है, अरदास प्रसाद बन जाता है।

असी जोन ना पवे नीहा उहा चरण पूजारी मुख उज्जल साचे दरबारी जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल थल महियल पीख भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवा कुरबान जाई गुर पूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने।

प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास गुर शब्दे की नारदय निवास गुर समरथ सदा दयाल हर जप जप नानक पय निहाल प्रभाती महला पंजवा गुर गुर करत सदा सुख पाया दीन दयाल पय कृपाला अपना नाम आप जपाया रहाउ संत संगत मिल पया प्रगास हर हर जपत पूर्ण पई आस सर्ब कल्याण सुख मन बूठे हर गुण गाए गुरु नानक तूठे प्रभाती महला प

काम क्रोध अहंकार बिनसै लगै कै प्रीत रहाऊ नाम लागै दुख भागै शरण पालन जोग सतगुर भेटै जम ना तेटै जिस तुर होवै संजोग रैन दिन सत्याए हर हर तजहो मन के भरम साध संगत हर मिलै।

अमित पाई जन नानक हर हर जाप प्रभाती महला पंजवा बेपहास पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम राम राम राम जाप काल कलेश लोभ मोह बिनस जाए।

अनेक प्रभाती अष्टपदिया महला पहला बेपास एक ओंकार सतगुरु प्रसाद दुबदा बौरी मन बौराया झूठे लालच जन्म गवाया लपट रही फुन बंद ना पाया सतगुर राखे नाम बिरडाया ना मन मरे ना माया मरे जिन किस की आसोई जाने शब्द विचार पहु सागर तरे रहाऊ माया संच राजे अहंकारी माया साथ ना चले प्यारी माया ममता है।

मन दूजे पाए, अंतर कपट महा दुख पाए, सतगुरु भेटै सो जी पाए, सच्चै नाम रह लिवलाए, सच्चै शब्द सच कमावै, सच्ची बाणी हर गुण गावै, निज घर वास अमर पद पावै, तां दर सच्चै सो

तो शब्द जलाए तावत राखै ठाक रहाए सच्चा नाम मन वसाए विषम बनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी सतगुर सेवे।

विचार, जप तप संयम हो मैं मार, जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रहत सच्चा सुख पाए, सुखदाता दुख मेटन हारा, अवर ना सूजत बीजी कारा, तन मन धन हरिया गै राखिया, नानक कह महारास चाखिया, प्रभाती महला पहला, निवली करम पुअंगम पाठी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किस सोजी नाही, परमे भूला बूड मरे, अंधा भरिया पर परत हुए, अंतर की मल कदे ना लह, नाम बिना फोकट सब कर्मा, ज्यो बाजी गर परम पुल्ले, खट कर्म ना

मन सा माया मोहनी मन मुख बोल खुआर मज्जन झूठा चंडाल का फोकट चार श्रृंगार झूठी मन की मत है करनी बाद विवाद झूठे विच अहंकरण है खसम ना पावे साद बिन नावे होर कमावना फिक्का आवे साद दुष्टि सभा वि

करो अढ़ाई धरती मांगी, बावन रूप बहाने, क्यों पयाल जाए क्यों चली है, जे बल रूप पछाने, राजा जनमेजा दे मती, बर्ज ब्यास पढ़ाया, तिन कर जग अठारह कहाई, कीर्तना चलै चलाया, गणत ना गणी हुक्म पछाना, बोली भाए सुपाई, जो किच वरतै तुदै सलाही, सब तेरी वडियाई, गुरमुख अलिपत लेप कदे ना लागै, सदा रहै सरनाई, मनमुख मुगदे आगै कीतै नाही, दुख लागै पछताई, आपे करे कराए करता, जिन एह रचना रतिया, हर अभमान ना जाई जियो, अभमाने पै पचिया, भुलण विच किया सब कोई, करता आप ना भुलै, नानक सच नाम निस्तारा, को गुर प्रसाद अकुलै, प्रभाती महला पहला, आखना सुनना नाम आधार, धंधा छुटक गया बेकार, ज्यों मनमुख दूजे पत

लख चौरासी बिन गुर बूझे जम की फासी एहो मनुआ खिन खिन ऊब पयाल गुरमुख छूटै नाम संभाल आपे सदे टिल ना होए शब्द मरे सहला जीवे सोए बिन गुर सूजी किसै ना होए आपे करै करावै सोए झगड़ चुकावै हर गुण गावै पूरा सतगुर सहज समावै एहो मन डोलत तो ठहरावै।

हर जन संगत पावे पार, सच बोले बोलावे प्यार, गुर का शब्द करनी है सार, हर जस कर्म धर्म पत पूजा, काम क्रोध अग्नि में पूंजा, हर रस चाखिया तो मन पीजा, प्रणवत नानक अवर ना दूजा, प्रभाती महला पहला, राम नाम जप अंतर पूजा, गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा, एको रब रहया सब ठाई, अवर ना दिसै किस पूज चढ़ाई, रहाउ मन तन आगे जियड़ा तुझ पास, जो पावे त्यो रखो अरदास, सच जिहवा हर रसन रसाई, गुरमत छूटस प्रभ

ब्राह्मण त्रै मिल जगते पाया, ऐसा बल चल तिनको दिया, हुक्मी ठाक रहाया। ऐसे जन विरले जागे अंदर, परख खजाने पाया, जात वरन ते भय तीता, ममता लोभ चकाया। नाम रते तीर्थ से निर्मल, दुख हो मैं मैल चकाया। नानक तिनके चरण पखाले, जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

पूरा भाग गुरु पाईए उपाय किते ना पाया जाई। सतगुर ते सहज उपजे होमे शब्द जलाई। हर सरनाई भज मन मेरे सब किस करने जोग। नानक नाम ना विसरै जो किस करै सो होग। बेपास प्रभाती महला पंजवां अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मात पिता भाई सुत बनता चूगह चोग आनंद सिंह जुगता उर्ज परे ओ।

दस नारी मैं करी दोहागन, गुर कहया ए रसै बिखागन, इन संबंधी रसातल जाय, हम गुर राखे हर लिव लाय, अहम मेव स्यो मसलत छोड़ी, गुर कहया एह मूरख होड़ी, एह नी कार कर कहीं ना पाय, हम गुर राख लिए लिव लाय, इन लोगन स्यो हम पये बैराय, एक ग्रह मह दोए ना खटाई, आए प्रभ पह अंचर लाग, करहु तपावस प्रभ सरबाग, प्रभ हस बोले।

निधाना कहां उड़ीसे मजन किया क्या मुसीत सिर नाए दिल में कपट निवाज गुजारे क्या हज का पै जाए केते औरत मर्दा साजी ए सब रूप तुम्हारे कबीर पूंगरा राम अल्लाह का सब गुर पीर हमारे कहत कबीर सुनो नर नरवे पर हो एक की सरना केवल नाम जपो रे प्राणी तब ही निश्चय तरना प्रभाती अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे लोगा परम ना भूलो पाई खालक खलक खलक मह खालक पूर रहो सब ठाई रहाऊ माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच कुंभारे।

अल्लाह अलख न जाई लखिया गुर गुर दीना मीठा कह कबीर मेरी शंका नासी सर्ब ने रंजन दीठा प्रभाती वेद कतेब कहो मत झूठे झूठा जो ना विचार है जो सब मैं एक खुदाए कह।

विनाशी माटी को बिस्मिल किया, ज्योत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया, क्या उजू पाक किया मुंह तोहया, क्या मसीत सिर लाया, जो दिल में कपट नवाज गुजार हो, क्या हज का बह जाया, तू ना पाक पाक नहीं सूझिया, किसका मर्म ना जानिया, कह कबीर पिस्त ते चूका, दोजक स्यो मन मानिया, प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत आद समाई, सिद्ध समाधि अंत नहीं पाया, लाग रही सरनाई, लेहो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पहाई, ठाढ़ा ब्रह्मा निगम बीचार है, अलख ना लखिया जाई, रहाउ तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, ज्योत लाए जगदीश जगाया, बूझ बूझ नहारा, पंचे शब्द अनाहद बाजी।

आपे निर्भउ समत बिचारी जो जन जान भजह पुरखोत्तम ता की अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी प्रभाती आदि जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया सर्ब निरंतर राम रहिया रव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजय शब्द बाजय आनंद रूपी मेरो रामैया रहाउ बावन बिखु बन बिखे बास ते सुख लागेला सर्बे आद परमलाद काष्ट चंदन पै

जो किस किया सो आपे प्रणवत नाम देव एहो जियो चितवै सोल है अमर हुए सद आखुल रहै प्रभाती भगत बेणी जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन चंदन मस्तक पाती हृदय अंतर कर तल काती ठग दिष्ट बग्गा लिव लागा देख बैसनो प्राण मुख भागा कल भगवत बंद चिराम क्रूर दिष्ट रता निस्बादं रहाउ नित प्रत इशनान शरीरं दोय तोती कर्म मुख खीरं हृदय शुरी संध्यानी पर दर्भ हिरन की बानी सिल पूजस चक्र गणेशं निस जागस भगत प्रवेशं पग नाचस चित अकर्मं हे लंपट नाच धर्मं मृग आसन तुलसी माला कारी उजल तिलक कपाला हृदय कूड़ कंठ रुद्राखं रे लंपट कृष्ण अपाखं।

सुख पाया, सर्व निवार सुख पाया, और अपना हृदय आया, सर्व निवार सुख पाया।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिखकाय, माया मोह परम पै पुले, सुतदा रास्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुने अंगुर संगत, तेह मुलांत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सो कहो अटल गुर सेवी है, अहनस सहज सुभाई। दर्शन परसें गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। हो वै शिव तख संबंधी, नूर अरसों पुरस।

निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने सुरतो वै मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चुटा न खाई मन्ने जम के साथ न जाई ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाई मन्ने बद संपर्क जाई मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म से की सन

अंत न जापै गीताकार अंत न जापै पारावार अंत कारण किते बिल लाहे दाखे अंत न पाए जाहे एहे अंत न जाणै कोई बहुता कहिए बहुता होए बड़ा साहिब ऊंचा थाऊं ऊंचे ऊपर ऊंचा नाउ ए बड़ ऊंचा होवै कोई दस ऊंचे को जाणै सोए जे बड़े आप जाने आप नानक नजरी करमी दात बहुता कर्म लिखा ना जाए वड़ा दाता तिल ना तमाए।

गया जापै जाए, धर्म खंड का हो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। किते ज्ञान खंड का आखो कर्म, किते पवन पाणी बसंतर, किते गान महेश, किते वर्म काढ़त गड़ियां रूप रंग के वेश। केतियां कर्म भूमि मेरे, किते

नमः भोग भोगे नमः सर्वदयाले नमः सर्वकाले चाचरी छंद तव प्रसाद। अरूप है अनूप है जो है वो है अलि है पेखा नाम है काम है अदे है पेया जीता पीता है बहाय गाय मान अनदान है। त्रिवर्ग है सर्ग है नील है नाद है अजय है अजाद है जन्म वर्ण है भूत है वर्ण है अगांज है पांज है चूज है चांज है। अमी गैर भी गै दंद है बंद है निर्भूज है सूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है जह है अनंत है महंत है। अली गै नर श्री गै नर लंब है संभ है गम है जम है भूत है सूत है अलोक है अशोक है कर्म है परम है अजीत है पीत है बह गाय। अमान है निदान है नी गै परी गाय भुजंग प्रयाद शंभ। नमो सर्व मान्य समाज तीन दाने नमो देव देवे अपेखी अपेखे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे अनंगी अनाथि नरसंगी परमाते नमो पन पाने नमो मन माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पन पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पन पाने नमो पद पादे अनंगी अनामे समाधि स्वरूपे परपंगी परमाथे समाधि भकूते गलंक बिनाने गलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरंग परम रूपे नमो योग योगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरंग परम वृद्धे नमो सहस्रपाणि नमो अस्त्रमाणि नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता पेखीय परमीय भोगीय भूते नमो योग योगेश्वरं परम ज्योते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेता प्रेत देवेश धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाशाह नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो आसंग शराने नमो मंत्र मंत्रंग नमो यंत्र यंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वं परनाशी अनुपे रूप समस्त कुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता अध उर्द अर्दं अगं उघर्ता परं परम परमेश्वरं पुरुष पालं सदा सर्वदा सिद्ध दा दाता दयालं अशेदी अपेदी अनामंग कामंग समस्त ब्राजी समस्त दास कामंग तेरा जो ऊर्जा जी शंभ। जले हैं थले हैं भीतावे हैं प्रभु आजुआ देश हैं अपेश हैं भयंग प्रयात शंभ। अगाधे अबाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्त तीन दाने नमास्तवंग नरनाथे नमास्तवंग परमाथे नमास्तवंग गंजे नमास्तवंग पंजे नमास्तवंगा काले नमास्तवंगा पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोखे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वभीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व यंत्रंग नमो सर्व दृष्टंग नमो सर्व कृष्टंग नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समातंग परसिजे कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सदिंग नवासी। चरपट छंद तव प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राण सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले। रुआल छंद तव प्रसाद आदि रूप अनाद मूर्त जोन पुरख पार सर्व मंत्र मान देव अपेवाद उदारु सर्व पालक सर्व कालक सर्व गोपन काल जत्र तत्र विराजी अवतूत रूप प्रसाद नाम ठाम न जात जा

देव एव न जानी जे वेद और कतेव रूप रंग न जात पास जानी के जेव दात माद न जात जा कर जन मरण विहीन

बकर फिर चतर जा कुमानी प्रतीन लोक चौदह के बिखै जग जा पी जय जाप आद देव नाद मूर्त था पिसव जय साप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरुख पार सर्व विश्व रचियो सुयम भवगण बंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरुख देश धर्म तांस ब्रह्म रहत भूतल अख पेस अंग राग न रंग जग जात पद न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप आमी गान सदेक मूर्ख दूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप स्तूत अंगहीन भंगनात्म एक पुरुख पार सर्वलायक सर्व कायको सर्व गोबृत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्वतेन पेख सर्वशास्त्र न जाने।

अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपैने काम आत्दुत प्रचंड मित गाते अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाड्य अंड बढ़ चाचरी छंद सौ प्रसाद गोबिंदे मकंदे उदारिय पारी हरियंग करियंग नामे कामे भुजंग प्रयात छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वरती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने आए चतुर चक्र दाने आए चाचरी शंभ ना सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काये जन्म न जाए न चित्र न मित्र पर पवित्र प्रदिशा दिशा दृश कृष भगवती शंद प्रसाद कथते क्या सिज दिशा क्या पज पेश है क्या गंज कर्म है क्या पंज परम है क्या पिज लोक है क्या दित सुख है के अवतूत वर्ण है के वूत करण है कि राजंग प्रवाह कि धर्म तुझाए कि अशोक वर्ण है कि सर्वा भरण है कि जागतंग कृति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्रह्म स्वरूप है कि अनुपम रूप है कि आदो देव है कि आप भेव है के चतरंग बहीन है के कह दीन है कि रोजी जाकर ही मैं रहा कह के पाक बेव है कि गैबुल गैब है कि अबुल गुनाह कि शाह निशाए

मुन मन प्रणाम गुन गण मुदाम हर भर गंज हर नर पर पांच गण गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खंड वर नर मंड अनुपव नाश त्रत दर दुरास आजन अनुपव अनाश मुन मन प्रकाश गुन गण प्रणाम जल फल मुदाम हंश जी अंग आसन पंग पार गत मेदार जल थल मांडव देश वैश पांडव जल थल महंत देश वैश बेअंत अनुपव नाश त्रित तर त्रास आजन बाई कैसदा ओंकार आदि कथनीय नाद खलखंड ख्याल गुरुवर काल कर कर प्रणाम जित चरण नाम अंश जिगाता जिजन

झाड़ कोई अगर न त्याऊं जो बर चाहूं सुतम ते पाऊं सेवक सेख मारे तारी चन चन सत्र मारे मारी आए आप हासद मुझे भरे आए मरण काल का त्रास ने भरे आए हूँ जो सदा हमारे पछा सरिया तो जू करे और अच्छा।

काल पाई कर विजन परकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब की ओ बेद।

दुख बाहि दे दुखी सुख बाहि साधन के सुखी एक एक की पीर बछाने गड़ गड़ के बड़बड़ की जाने जावद करक करा कर दारा प्रजा दर्द तब दे अपारा जाव्या करख कर तो कबू तम मैं मिलत दे दर सबू जेते बदन असृत सब धारे आप अपनी बूझ चारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद बेद आलम।

रिद सिद कर्म सोई दुष्ट शाश्वत कह न कोई। एक बार जंत मैं संभारा कल वास्ते ताय उबारा।

कर्म होवे हृदय तना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जप्यो सारंग बाणी, कहे नानक सदा गावो इह सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कची है बाणी, बाणी दा कची सतगुरु बाजो होर कची बाणी। कहिंदे कचे सौंदे कचे।

गुरु का जीवाणी गुर का शब्द रतन है ही रे जतड़ाओ शब्द रतन जत मन लागा आहे हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलया सचलाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जसनो दे बजाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जत जड़ाओ शिव सकदा बो बाय कह करता पे हुकुमरदाए आप बेखै गुरमुख से बुझाए तोड़े बंधन हो गए मुक्त शब्द मन बसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक लिवलाए कह नानक आप करता पे हुकुम बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्सार न जानी गुरु वाजो तत्सार न जानी तेही गुणी संसार ब्रह्म सुता सुत्या रहन व्याणी गुर कृपा दे से जान जागे जन हर मन वस्या बोले अमृत वाणी कहे नानक सो दत्त पाए जिसनो आन दिन हर लिव लागे जागत रहन व्याणी माता के उदर में व्रत पाल करे सो क मनो बसारी है मनो क बसारी है बुढ़दाता जे अगन में आहार पहुंचावे उसनो कहे पो न सके जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कहे नानके बुढ़दाता सो क मनो बसारी है जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया माया अगन सब एको जे ही करता खेदर जाया जां तिस भाणा ता जमया परवार भला पाया लिव।

ना पाए जाए किसे बिटो रहे लोग बिन लाई ऐसा सतगुरु जे मिलाए जिसना सिर संपी है जिसदा जिसनों सिर संपी है बिचों आप जाए ते जिसदा जियो तिस मिल रहे हर बसै मन आए हर आप मुलक है पाग दिना के नानका जिन हर पल पाए हर रास मेरी मन बनजारा हर रास मेरी मन बनजारा सतगुर दे रास जानी हर हर नत जपो जियो ला खट दिहाड़ी ए धन उतना मिलया जिन हरिया पे पाना कह नानका रास मेरी मन होआ बनजारा ए रसना तुवन रस राज रही तेरी प्यास ना जाए और कितै जे चर हर रस भलै ना पाए हर रस पाए पल्ला पिए हर रस बौड़ ना दृष्णा ला गया है यह हर रस गर्मी पाई है सतगुर मिलै जस आए कहे नानक होर अन रस्ता विसरे जा हर वसै मन आए ए श्री राम मेरे हर तुम मैं जोत रखी धातु जग मह आया हर जोत रखी दुद विच धातु जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जन जी ओ पाए जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया दा चलत हुआ चलत नदरी आया कहे नानक श्रेष्ठ का मूल रजिया जोत राखी धातु जग मह आया मन चाओ पया प्रभाग सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया हर गाओ मंगल ने सखिए सोग दुख ना ब्या पे गुर चरण लागे जनस भागे अपना बिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.
3: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
4: Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Tusi sun rahe ho Sikh Radio 94.3 FM. Assi bol rahe haan Gurdwara Western Singh Sabha Williams Lake BC Canada ton. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3074। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 250-392-3074। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, singhsabha2@gmail.com, singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

मंडप कूड बाड़ी कूड बसनहार कूड सुनहा बापू बनहार कूड काया कूड कपड़ कूड रूप पार कूड़ मिया कूड बीबी खपोए खार कूड कूले ने लग्या ने लगा विसरे करता हार दिखे धोती सब जमसनहार कूड मठा कूड बसो कूड बैंग कूड नान खाने बहन की बाहर पूरा कूड़ मोहल्ला पहला।

सुख मिला पहला नानक मेरे शरीर का एक रस इक रखवाओ जो जी फिर बताइए ज्ञानी विजेता ज्ञानी विजेता है साजू रसन तो का धर्म के रखवाओ रहते राज्य से।

अशोक वाला पहला तो ब्राह्मण को करलावो को बर्तन न जाय रोटी टिका तै जमाली धान मिले जा खाई अंतर पूजा बड़े कटिबा जा पड़क देवा संजम तुरका भाई छोड़ी रे पखंडा नाम लय जाय तिरंडा

सब सूत्र भरन दूजे लगे जाए जमर मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है ये तो नहीं संभाल नानक जी गुरु प्रमुजा औड़ी सतगुर बड़ा का सलाही है जिस विच बढ़िया बढ़िया जट सपा मन बसाया तुम्हारा

अशोक माला पाला नान फिका बोला तनु फिका होए फिको फिका सब दिया फिके फिकी सोए फिका दरगा सटिया मोसुका फिके पा फिका बोला।

ओत को जन हर सरा ते सुन सुमार न हो रस माते और सहर जन हर हर जपे हर का पोत पोत नहीं छपे हर की पोत मोत भाव करे नान जन संकेत तरे पार जाते हर को ना काम ते हर हर गुणगान सब से उत्तम हर की कथा नाम संत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत दवस्था संप्रत हो दर्द सौ नथ है संत का संग वट भागी पाई है संत की सेवा

कचिकित मन हर के नाम की महिमा हो नानक नाम उदरे पते बहुमोच बहुत सियाण जमका पौ ब्या प्यांक जतन का तुना थ्रप है देख अनेक गन्ने बुझे कोट पाथर गने सिजै छोड़ सुनाई उपया मोह ब्या पे माया जा और कर तू सौ जमुना में।

सकामदय अभिमान हास को जो जाने नीचा सो गनिय सबसे ऊंचा जाका मन हो सर कीरीना हर हर नाचन घट घट पीना मन अपने से बुरा मिटाना पेखे सर से सरना सुख दो जन समझ चेताना न पाप मिले पा निर्धन को धन तेरो ना उन छावे को न तेरा था निमाने को तो तेरो महा सरपटा को देवो दान करम करावन हार स्वामी सरकटा के अंतर जामी

जे प्रसाद धर पर सुख वस सत्ताव नि बनता संगत है, जे प्रसाद पीवे शीतल जा सोदा ही पण पाव कमला, जे प्रसाद भोग सर सा सुमारी संसार बसा, दीन हस्त पाव कर्म नेत्र रसनाथ से त्याग और संग रचना।

पार रतन चा को भी संगत साचो चोर संगमत है जो छना स्वर कर्मा ने जो हो सो दूर पर छोड़ जाए तुका श्रम कर संग सहाय तुझ पर हरे चंदने पोता रह तो गर्द पे पसंद संग हो।

कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद सची अमृत का चर्चा कर रख मन माए जे प्रसाद सुगंध तलावे तिसको स्मृत पर मंगल पावे जे प्रसाद बसे सो मंदिर तिसे त्यार सदा मन अंदर जे प्रसाद रे संसो बसना आठ पर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रखो नानक स्वात्याय चावन जो जे प्रसाद पार पटम रहावे तिस्या कतोर लगावे जे प्रसाद सोसे सोई जे मनाट करता का दस गावी जय जे प्रसाद तो सब को माने मोता को जे सत्संग बखाने जे प्रसाद तेरा तात्र मा सो त्याय केवल पारगम प्रभु जो कर गए मन पावे ना न पसे ती कर जावे जे प्रसाद लोकन चंदे लूला उत्सना स्नेही जे प्रसाद तेरा और मा सो पावे हरा जस गए

अस्परी सबका सम खुजल हो सलिखोत सबका सम जय अभिमान सबका सम परदेशो ज्ञान सबका सम जय प्रवनेरा सोतन बेरा सबका सम पर नाम रतन सबका संगे भूपर जतन साल को नमा वर्ण कौन प्राणी स्नान साल की शोभा ब्रह्मा सुमानी साल का संग गोचर में रह साल का संग सदा पर फुल साल का संग आवे बस पंचा साल संग अमृत रस पंचा साल संग वे सब किए साल का संग मनोहर बहन साल का संग न कतू तावे साल संग सिर मन पावे साल का संग माया ते पे साल संग न पशु प्रसन्न सात संग दुश्मन सभी साधु के समा पुनीत सात संग के सोने बै साल के संग न बिंगा पै साल के संग न ही को मंदा सात संग जाने परमानंदा साल के संग न ही होता साल के संग तजय सवाब आपे जाने साथ बढ़ाई ना न साथ तो बने आई साल के संग न कभू तावे साल के संग सदा सुख पावे सात संग बस जगो चले साधु के संग अजर सहे साध कसम बसे थन उचे साधु कसम महल पहुंचे साध कसम दड़ा सतर्म साध कसम केवल पार्वन साध कसम पाए नाम निदान साधु के कुर्बान साध कसम सब कुल उदार साध कसम साधु मीत को चमने तार साधु कसम सोतन पावे जे तंते सब को वर्षावे साध कसम धर्म राय करे सेवा साध कसम शोभा सुर देवा साधु कसम पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साल कसम सर्वथम गम नानक साल कसम सवजनम साल कसम नहीं कशका दर्शन तेर तो स्नेहार साल कसम कलोक तर साल कसम नर पर हर साल कसम नहीं हवा सोला साल सम विश्व सर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साल कसम नंद था जावे पार ब्रह्म साधरे वसाय नान कुदरे साल सम रसे साल कसम सुनो हरना

सत्संग सही हमारी सब कसम ते सौरव नानक साहब कहते समझो साहब की महिमा वेदना जाने जता सुने ते तब ख्यान है साहब की उम्मा ते गुण ते दूर साहब की उम्मा रही भरपूर साह की शोभा का नाही अंत साह की शोभा स्वाभ्यंत साह की शोभा उचे उची साह की शोभा मुहते मुची साह की शोभा साध बनिया ही नान सब तो वेदना पाई चलो मन साचा मुख साचा सोए और ना पेखे एक सुबिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नर ले जैसे जल में कमला ले ब्रह्म ज्ञानी सदा नर दो जैसे सुर सब कौशो ब्रह्म ज्ञानी का दृश्य समान जैसे राज रंग को लागे कुल कुवान।

सत्संग धनिया बहुत स्वागत। ब्रह्म धन का मत परमानंद, ब्रह्म धन का कैसा आनंद। ब्रह्म धन सो सह नवासना, ब्रह्म धन का नहीं विनाश। ब्रह्म धन ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म धन एक संगेता। ब्रह्म धन का हो अचंत, ब्रह्म धन का निर्मल मन। ब्रह्म धन निष्कर प्रभाव ब्रह्मा, ब्रह्म धन का बड़ प्रताप। ब्रह्म धन का दसवट पा की पाइये, ब्रह्म धन को बल बल जाइए। ब्रह्म धन को खोजे महेश नान, ब्रह्म धनी आप परमेश्वर। ब्रह्म धन की क्यों तनाए, ब्रह्म धन का सर मन माए। ब्रह्म धन का कौन जाने फिर, ब्रह्म धन को सलाह दे। ब्रह्म धन का कथन दया दाखर, ब्रह्म धन सर्व का छात्र। ब्रह्म धन की मत कौन बखाने, ब्रह्म धन की गत ब्रह्म धन ही जाने। ब्रह्म धन कांतना पारनाथ, ब्रह्म धन को सदा नमस्कार। ब्रह्म धन सब सिद्ध का करता, ब्रह्म धन सजीव नहीं मरता। ब्रह्म धन मौजूद।

नानक होवा परस सगल न सारे अष्टपदी। मिथ्या नाही रचना प्रतिमा न प्रीत नरंजन रस पत्रा रूपना पेखे नेत्र साखित संसंगे करना सुने कहूं की निंदा सत्य जाने आप सो मंदा। गुर प्रसाद विख्या पर है मन की वासना मन से तर है इंद्री दे पंच दोते रहना कोटवा दे को ऐसा पर बहसना सज सुपर सो प्रसन्न विष्ण की माँ ते पिन कर्म करतो विन्य कर त्रिदासनों का निर्मल कर्म कहूं फल की इच्छा नहीं बास है कि फल की संसंग्राच है मंत्रण तुन गोपाल सब प्रभु कृपाल आप दृढ़ नाम जपावे नानक वैष्णव परम हर पावे भगवती पवन पवकार सत्याग्रह दुष्कासन मंत्र विषय सगला परम कर पूजा सल पारगम शासन पापा मूर्ख होवे सत भगवती की मत उत्तम होवे पवन कृपा करे न प्रीत मंत्राता विष्णु प्रीत हर के चरण दे वसावे नानक ऐसा पोती पवन को पावे सो पंडित जो मन प्रभु दे राम नवा तुम सोते राम नाम सारस पीरस पंडित कह दे जा जीवे हर की कथा हृदय वसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद प्राण समृत हो जय मो सुख में जाने असुर सवर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा दे बीज मंत्र सर्व को ज्ञान सवर्णा में जपे को नाम जो जो जपा चुकी गतो ऐसा पावा जन कोए।

आपे कणकण जो प्रपा सोई फुन हो पसरो आपो अंतरंग लखन जाए पारगम फेरंग जैसी मध्य तस अप्रगास पारगम करता बनात सदा स्वास्थ्य।

पति कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बांध भरना उदासी कई कोट वेद के सोते कई कोट तपिश्वर होते हैं कई कोट आत्म ध्यान सार है कई कोट कवका विचार है कई कोट न सनाम से हम है नानक करते काम सना पावे हैं कई कोट पैमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपा कठोर कई कोट अफेगा तमने कोर कई कोट पर दल को है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया शर्मा है कई कोट प्रदेश प्रमाए जिद लाओ ते सवना नार करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस होगी कई कोट पंखी सर्पो पाए कई कोट पात्र वृक्ष निप जाए कई कोट पम पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सुर नखत्र कई कोट देवता इंद्र सशतर सब समोरी अपने सुतारे नान जैसे पावे तेते निस्तार कई कोट राजस्थान सात कई कोट वेद पर सुंदरता सास कई कोट कीर्तन समुद्र कई कोट नाना प्रकार जन कई कोट किए चल जीवे कई कोट गिरी में स्वर्ण थीवे कई कोट जाकर प्रसार कई कोट पुत्र सुख मृगात सब ते मेरा तो ते दूर नान का परिपुत्र या परपुर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरसुर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीव है मर है कई कोट बहुत जोनी फिर है कई कोट बैठते खाए कई कोट कहले थल पाए कई कोट किए धनवान कई कोट माया मै चिन्ह जय जय पाना तय तय राखे नान सब के प्रव कह हाथे कई कोट पह बैरागी राम नाम संचन लेवलागी कई कोट प्रभु खो जनते आत्म पार्वम लहंते कई कोट दर्शन प्रत्याचन को मिलियो प्रव अवनाश कई कोट मंग है सत्संग कई पार बंचन लागा रंग जिनको होया सो प्रसन्न नान ते जन सदा तन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश भ्रमण कई कोट होया तार कई जल की मोह विस्तार कई बार पसरे पसार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट कीने बहुपात तव ते ब्रह्म सुमात ताका अंत न जाने कोई आपे आनान पसोय कई कोट पार्वन के दातनो ता संप्रकाश कई कोट तत्के बेते सा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रखती वह और पैसा सभी जीव है।

सोचे कछोए तब इसको सोना ही कोई। जब ये जाने मैं कुछ करता तौला गर्भ जोन में फिरता, जब तारे को बैरी मी तौला ने चलना ही थी, जब लम्बो में समाए तौला तुम्हारा देश सजाए।

बिना संतो नहीं को राजा सोनम रो वृक्ष सब खाजे नाम राम सर्व सुख होय बड़ भागी किसे प्राप्त होय कनक राम ने आपे आओ स्वस्व नार तुहार जा कनक राम करने हार के आप कहाँ विचार जैसी दृढ़ करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो उसकी न सो अपने रासों ते दूर सब हूँ के संग बुझे देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे न दिल से आवे न जाए नान सभी रह समाए।

अष्टपदी। संत का दुखन आज कटा, संत का दुखन हम तो नहीं छूटा। संत का दुखन सब सौ जाए, संत का दुखन अर्क में पाए। संत का दुखन मत तो मलिन, संत का दुखन सो बातेहीन। संत के अच्छे को रखे ना कोई, संत का दुखन तान पर सोए। संत कृपा कृपा दे करे ना, न संत सनिंग पी करे। संत का दुखन से मोपा, संतन का दुखन तार जोन लगे। संतन का दुखन सर्व जोन पाए, संत का दुखन त्रिगत जोन कमाए। संतन का दुखन तृष्णा मांझल है, संत का दुखन सब कौशल है। संत का दुखन से सब जाए, संत का दुखन इतन चाय। संत दो ही कथाओं को नाए, नान संत पाए पावे पीगत पाए। संत का निंद महत पाई, संत का निंद खिंत कि न पाई। संत का निंद महा त्यारा, संत का निंद परमेश्वर मारा। संत का निंद राय कही न, संत का निंद दुखिया यार दीन।

का दुखी सदा पोत संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डालना गए, संत के दुखी को सोचा गए, संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सुराधिकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दूना सोचे टे, संत के दुखी को ना ही छाओ ना न संपालता लय मिलाए, संत का दुखी अद बीते टूटे, संत का दुखी किसे काय ना पहुंचे, संत का दुखी का उद्यान फरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा जन सास बना मृत्यु की लोथा, संत के दुखी की जरकशना है अपन भी जाते ही खाए, संत के दुखी को अपना रखना ना संत पायता लयो बार, संत का दुखी क्यों बिललाए जो जल भी होन मछली।

जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदि अवनाशी ब्रह्मन में रात मन की तुम प्रीतिया जैसे परि नाही किस कोय सर निरंतर को सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गई सुजाना पार्वन परमेश्वर को बिन कृपा दान दयाल बसंद सत्य की तन पाओ नानक मन अनहराओ।

तपिसर कृष्ण मैं भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुर का किन अंत ना पाया जख लीला की मितना सो देवारे अवगाय पिता का जन के जाने पोसल पुरोई अपने सोच सुमत ज्ञान ते अंजन दे जन दासना ते आवे से ते गुण में जाको परमाए जन मरे फिर आवे जाए ऊत नित के असान जसा जनावे तसा नानक जन नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे करंग नाना दिल की नो विस्तार सदव नासी एक अंकार नाना चत करे खिनमाए पूरे अपूर सब ठाए नाना दिल कर बंस बनाई अपनी क्यों ते आपे पाई सब कर तुसके सब तुसके ठाओ जब जब जीव नान कर नाओ नाम के तारे सले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मण नाम के तारे स्मृत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे अगाध पता नाम के तारे सले आकार नाम के तारे प्रिया सपो नाम का संगुद्रे सुन सरवन कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नाना चौथे पर मैं सोजन घट पाए रूप सत्या का सतसान पुरुष केवल प्रधान करतूत सत सत्या की वाणी सतपुरुष समय समाणी सत्कर्म जाति इतना सत मूल सत सत उत्पत सत्कर्णी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सपरी सतनाम प्रभु का सोदाई दसवा सत नान गुरती पाई सत भजन साधु

चरण सत सत सनहार, पूजा सत सत्य अवधार, दर्शन सत सत्य फनहार, नाम सत सत्य अवनहार, और सत सत सवतारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभवता, स्वर्त सत सत जसंता, बुझनहार को सत सब होए, नानक सत सत।

प्राता ब्रह्म जन्म जन्म पार्वम एक अपने कछ परम सहसन पला ना जाइए नानक ऐसा गुरबट पागी पाई है सब दर्शन ते फिर पनी प्रसाद चरण गत निर्मारे पेट संग्राम गो रवे पर गांव की दरगह गए सुनकर बचन करने आगा ने मन संतोखा संपत्ति आने पूरा गुर अखियो जाता मंत्र अमृत सेखे हुए संत गुण व्यंत कीमत नहीं पाए नाना जपा तिलय मिलाए।

सतगुरु सेवक दे वो माया कसन ले मन में रखे हरा रे अंधकार दीप प्रगाश नान परम दूत ते नासे आत्माए ठाण वरताई अनंत अनु नाथ पाए तपत महे ठाण वरताई आनंद पया दुख नाथे पाई जन्म मरण के मिटे अंधे से साधु के पूर्ण उद्देश्य पहुंचुका निरपा हो बसे स्वर्ग मंत्र कहन से जिसका सातन कृपा तारी साथ जपना मुरारी हित पाई चुके पंगम सुनान का राजा सर्वन निर्गुण या सरगुण पियो ही कला तार जन सली मोई अपने चित्त

करो एका मान से आओ जपो और नाम सिमर सिमर सिमर सो पाओ आओ जपो और है नाम जपाओ बहुत पाए करिए संसार जन पोती तनो शिशार सब कल्याण।

अपना शिष्य अपने संत जन्म मरण कहो का विनाशन जब पूर्ण करता तो सोए तजम की स्वास्थ के सोए जब अवगित गोचर पवे खाता चित्र गुर के पूछ चलेखा जब नाथ मंजन गोचर गादे तो पहुँचते कौन बंधन वादे अपना पापी जब जानन के अपन हो पापी हो प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तब निर्मल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तक कौन कौमान कौन अभिमान जय श्रो के वो जदि तर सब सदलत कौ की सर जय श्रो के वो जदि तर सर सदलत कौ की जय जो श्रो की जो

प्रकृष्ट कर संतमित सावधान का गुरजीत सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सोत निदान सर्व क्षमता की पूर्ण होए प्रदान कृपर सब लोए सब ते उच पाए आसान बौर न हो गए अमन जान हर तन खार चले जन सोए नानंद से प्राप्त होए खेम सा वेद नव निद

0: केरबो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसीं इह प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तों सुन रहे हो। यह प्रोग्राम गुरद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तों प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसीं सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Speak Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3875.

बाबा बुढ़ा जी ने अरदास करने की खबर सारी सिख संगत में फैल गई। संगत बहुत प्रसन्न हुई, पर किसी ने कहा इस उनके उल्टा सत्र विच गया और एक खबर दी दोने जी सर कुछ की कोड़ा हो गए। कर्मो मत्थे से वट पा के पति नु कह लगी, लो कुंता जी ए भी आ गई कि गुरु पिछो साडा पुत्र मेहरवान गद्दी पे बैठेगा। बाबा बुढ़ा जी का वर खाली नहीं जाएगा, हुन उन्ना दे सर पुत्र हो पड़ेगा ते असी हाथ मल दे रह जावांगे। गुरु खालसा जी अरदास विच बहुत शक्ति है। बाबा बुढ़ा जी की अरदास पूरी हुई 19 जून 1595 ईस्वी नु गुरु अर्जन देव जी दे घर माता गंगा जी की कुखो गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने अवतार धारिया। हार वड़ी छेवी बुद्ध वार दा सुभागा दिन माता गंगा गंगा कर होए छेवे अवतार दी फुल वरसाए रल देवता आकाश ता उठे वधाइयां नाल गूंज संसार जी कंब के पाते पखंडी जे डोल गए धर्मियां ने खुशी विच कीता जय जयकार जी। होया महाबली जो निमाणियां दा मान बनो पीतल जी आकियां दा रोड़ अवतार जी। गुरु हरगोबिंद जी महाराज दे प्रगट होने नाल घर घर विच खुशी दे वाजे वजे ते वधाइयां नाल संसार गूंज उठिया। हर एक जुबान ते एह लफ्ज़ सन, वो संतों के लिए बक्का लेके आया, वो भक्तों के लिए पन्ना लेके आया, भक्ति को महफूज रखने की खातिर वो भक्ति की आला दुआ लेके आया, वो जनता का दिल में दर्द लेके आया, वो जालिम के लिए कर्जा लेके आया। झुक जाओ अदब से ऐ दुनिया वालों, खुदा का संदेशा खुदा।

ना दे देंगे। सानू उन्हां दी रजा विच ही राजी रहना चाहिदा है। पर दासी ने माता जी दे चरण घुट के फड़ ले, नहीं माता जी तुहानू मेरी बेनती मननी ही पवेगी। शाम नू जदों गुरु अर्जन देव जी महाराज घर आए तां माता गंगा जी दा चेहरा नित नालों वधेरे उदास वेख के कहन लगे, वाहिगुरु दी भगती विच लीन रहण वाले गंगा जी अज चित उदास क्यों है। हमदर्दी दे चार शब्द सुन के माता जी फिस पए अते गुरुदेव दे चरण फड़ के जिस तरह बेनतियां कर रहे ने उन्हां बोलां नू अकाल अकैडमी बड़ों शहर दीबिया का ढाडी जथा है।

माता गंगा जी नेत्रा चो नीम होंदे हुए कह रहे सन, मेरे सिरताज गुरदेव तुहाडे दर ते आए हर एक सिख दी कामना पूरी हुंदी है, इस दासी ते भी मेहर करो ते पुत्र दी दात बख्श दियो। गुरु अर्जन देव जी महाराज तां इह जाणदे सन कि समा पा के उन्हां दे घर मेरे श्री दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ने प्रगट होना है, पर माता जी नूं धीरज देंदे हुए कहन लगे, गंगा जी साडे नालों गुरु दी संगत वधेरे शक्तिवान है, जे तुहानूं पुत्र दी दात चाहीदी है तां किसे पूरन गुरसिख दे चरणां विच जाके अरदास करो। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जो अपने सिखां नूं वडियाई बख्शण वास्ते इह कौतक रचाउंदे ने, नहीं तां उन्हां कोल किस चीज दा घाटा है। हर जी अपनी वडियाई पावई जनका जयकार कराई। माता जी उतावले होके पुछन लगे, मेरे सरताज

माता गंगा जी ने बड़े प्रेम नाल मिट्टियां रोटियां पकाईयां अते पौने विच बन लईयां, नाल गंडे भी बन ले ते लस्सी दा कुजा सिर ते रख के बिल्कुल सादी पोशाक पाके देवता वल नूं चल पए। बाणी पढ़दे होए माता गंगा जी जदों बाबा बुढ़ा जी पास पहुंचे तां बाबा जी फरमाउण लगे, माता जी अज मैनूं बड़ी भुख लगी है, तुसीं धन हो जो अपने सेवकां दा इन्ना ख्याल रखदे हो। माता जी ने रोटियां खोल के बाबा जी दे अगे रख दित्तियां, नाल मक्खन दा छन्ना ते गंडे भी रख दित्ते। प्रशादा छकदे होए बाबा जी एक मोटा जिहा गंडा लैके मंजी दे पाले ते रख के मुक्की मारदे होए कहण लगे, माता जी आप दे कर ऐसा वीर पुत्र पैदा होएगा जो जालमां दे सिर इस तरह भन्नेगा। प्रशादा छक के बाबा बुढ़ा जी माता जी वास्ते पुत्र दी दात लई अरदास।

डॉक्टर कुंज बाहर है, कुंज सांप ने तानते पहनी हुई है, जहर उसने अंदर अपनाई हुई है, जहर अंदर है, बिख अंदर है, कुंज बाहर है। हुण जदों त्यागन का मसला आया उदों सप अंदरली बिख नहीं त्यागदा, बिख नहीं छड्डदा। हर 15 दिन बाद कुंज त्याग देंदा, जदों कुंज त्यागदा ना उदों जहर वध जांदा। जिहड़े लोग सप्पां दी जहर इकट्ठी करदे ने, कई ऐसे फार्म बन गए ने, फार्म जिथे सप राखवे ने ते केवल जहर प्राप्त करने लई राखवे ने। उन्हां नूं इस गल ते पता लगदा है फलाना सप पूरी जहर अपना चुका है, जहर दा भरिया होया है, ये हुण इहदे कोलों पूरी जहर प्राप्त बिख प्राप्त कीती जा सकदी। इस गल दा एहसास ही इस तों हुंदा है जदों ओह कुंज लाउंदा है। सप दे उपर कुंज है, अंदर जहर है। ते सतगुरु ने बाणी विच बाबा नामदेव जी दी रचना ते बैठ के एक ख्याल कहन लगा।

कुंज छड़ दिंदे ला दिंदे बिख नहीं छड़ अंदर जहर होर इकट्ठी कर लेंदे ते गुरु कहिंदे ने भला बाहर कुंज लाउण दा की फायदा छड़न दा की फायदा अंदर जरूरत असी जहर छड़न दी जिस नाल लोगां दी जान नूं भी खतरा है जिस व्यो नूं अंदर होण करके कोल कोल की तू भी कल्पना रहिंदा जिन्हां दिनां अंदर सप्प दी जहर वध जांदी है ना उन्हां दिनां अंदर सप्प नूं बेचैनी हो जांदी इसलिए सियाणियां ने कहावत बना दी फलाना ते सप्प वांगू अंदर ही जहर पहुंच जांदा जिन्हां दिनां अंदर सप्प दी जहर भर जांदी है उन्हां दिनां अंदर सप्प कुंज छड्ड दिंदा है ते अंदरों अंदर बेचैन हो जाता है फिर एक थावे टिकदा नहीं ते गुरु कहिंदे ने ओ भलिया जिस जहर ने तैनू भी बेचैन किया हो जिस जहर ने लोगों ने भी खतरा पैदा किया हो क्यों ना वह जहर छड़ दित्ती हो तू तो कुंज छड़ के ही खुश है

वो सारा मन से निर्भर, तन से ठेडा बजेगा, पीड़ा का एहसास मन करेगा, पर मनुख नु तन से ठेडा लगा ना, इसलिए तन का ठेडा लैके खून निकलिया हुआ लैके डॉक्टर को पहुंच गया, इन पट्टी कर दी, ठेडा लग गया, डॉक्टर को कोल पहुंचे इन पट्टी कर दे, पर मन की जी पीड़ा है उनका डॉक्टर संसार का डॉक्टर है कोई नहीं। हम जी चीज छुपी हुई है सामने नहीं दिसती, उनके रोग का भी इन पता नहीं लगता, तूने बड़ी तो क्यों आख दिता, कह लगे मैं उस रोग का जिक्र कर रहा हूं जिस रोग का जिक्र हर कोई नहीं करता। मैं एक बार पिछले हरे चल की रोग आपे आऊंगा, अंदर का रोग भी आपे आऊंगा, अरोगता आपे नहीं आऊंगा, कभी ख्याल करे रोग मनुख नू आपे लगता है, जो लग जाता है उदो पता लगता है, कोई भी संसार का मनुख रोग नहीं चाहता फिर भी लग जाता है, तो जे मनुख ने आपे लाना हो लगे कोई ना, रोगी कोई हो ही ना, कहीं कोई दुनिया का मनुख चाहता मैं रोगी हो जा, दिन रात मनुख नू चिंता एक है कि ना लगे, अनेक उपराले करता है कि रोग ना लगे, एडवांस पहला दवाइया खाता है, पहला इंजेक्शन लवादा है, इस रोग का डर है इसलिए इनका इंजेक्शन लवा लवा, पहले ही लवादा पर फिर भी रोगी हो जाता है, और अगे नो ज्यादा हो रहा, अगे इन्हें हॉस्पिटल नहीं सन, इन्हें डॉक्टर नहीं सन, हूं डॉक्टरी विद्या मेडिकल सब्जेक्ट सब तो महंगा, तो महंगा सब्जेक्ट उही होंगे जिनकी लोड़ ज्यादा हो, लोड़ उसे भी ज्यादा होंगे मेडिकल डॉक्टर की कल लोड़ ज्यादा ना, मरीज ज्यादा ने, हॉस्पिटल अगे ना कितने ज्यादा नहीं, अगर स्टेट में तो वाला हॉस्पिटल होंगे होगा, हूं यह नहीं हर महल में हॉस्पिटल ने, पर उसे भी तुम्हें कई बार इंतजार करनी पैंती है, दाखला नहीं मिलता, एमरजेंसी महकमा वक्त क्यों बनाया ने, ताकि जो बहुत ही परेशानी हो कुछ समय लिए इतने रखा जा सके, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो अचानक कोई मरीज जाए उदो बेड मिल जाए, इंतजार करना चाहिए, रोगी इन्ने बद गए इन्हें मतलब रोग बदे ने कटे ने, पर जो दुनिया का कोई मनुख चाहता नहीं कि मैं रोगी हूं फिर रोग क्यों बन रहे, इनका मतलब रोग आपे लगता है तो पता ही होगा उदो लगता जो लग जाए, तन की भी हालत है लेकिन तंदुरुस्ती आपे नहीं आती। मैं एक बार एग्जाम्पल दें अगर कहीं किसी असाध रोगी किसी तंदुरुस्त एक कमरे में बंद कर दो, वो इको बिस्तर में सौन, इको कमरे में रहन, इको ही थाल में खाना खान, भला सोचियो किसी तंदुरुस्त उस रोगी को रोग लगन का डर है या उस तंदुरुस्त को रोगी को तंदुरुस्ती लगन का डर है, ये तो खतरा हो सकता है भी रोगी के नाल खा के रोगी नाल एक कमरे में रह के कोई अरोग तंदुरुस्त आदमी किसी रोगी न हो जाए, इसे भी बचाने कदे ये नहीं ख्याल किया भी ये भला किसी तंदुरुस्त के नाल रोगी रहेगा तो तंदुरुस्त हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, रोग जरा तंदुरुस्त लग सकता है, तंदुरुस्ती रोगी नहीं लग सकती किसी नाल बैठ, तू बिल्कुल रोगी होने लिए कोई उपराला ना कर, किसे असाध रोगी दे दिन रात नाल लेना रहना शुरू कर दे, उनके नाल खाना शुरू कर दे, आहिस्ता आहिस्ता वो रोग दियां अलामतां तेरे विच आ जाएंगी, आप ही आ जाएंगी, तू ना चाहे तद भी आ जाएंगी, ते तेरे नाल कोई 50 साल तंदुरुस्ती तेरी नू चाहता रहे केवल कोल बैठ के ते कोई इलाज ना करे बिल्कुल तंदुरुस्ती उन्हों नहीं आएगी, तंदुरुस्ती लैण लई किसी डॉक्टर को जाना पेगा, तंदुरुस्ती लैण लई उनके कोल दवाई लैनी पेगी, उनका सेवन करनी पेगी, 50 मिनट करके तां तंदुरुस्ती आएगी, रोग आप ही आ जाएगा, यो कारण गुरु ने आके कहने लगे जो जो दिख है सो सो रोगी, क्योंकि रोग आप ही लग जाता, गुरु कहते बाय नहीं इसे तरह तेन, क्योंकि तन का जो रोग लगता है तेन ख्याल आता है तू तन के रोग का उपराला भी करना, तन में मैल लगती है, तन की मैल रोज तो हों उपराला भी करना, सवेरे भी शरण करना, शामा भी करना, कपड़े भी बसल, क्योंकि दिसदा है पर मन दिसदा नहीं, मन संगत में बैठ के रोगी हो जाता है, क्योंकि रोग तो लगता है रोगी हो जाता है, लेकिन इनका तेन ख्याल ही नहीं करे, तू किसी ऐसे डॉक्टर को नहीं गया जिहड़ा मन का इलाज करता हो, गुरु ने इसे लिए बाणी अंदर रख दिता, कहन लगे

फिर मैल बधाए। बल्कि दूसरे पास कहने लगे, एक हर निर्मल मैला मलता, एक संसार एक हर निर्मल जानता अंत न पार। प्रभु सी निर्मल ते मन सी मैला, उनके आके किमें वसते। हुण मनुख ने चाहया प्रभु वसते, पर तो हुण तुहानू लगते हैं तीर्थत गया तन तो गया। सवेरे उठिया अमृत वेले इनान कर लिया, बड़ा प्रसन्न, मैं तो सवेरे उठ के इनान किया। पिता से तड़दा ही है, पिता से तड़दा ही है। गुरु ने क्यों आख्या, कल इनान सिमर प्रभ अपना, ये दो इनान वक् वक् ने। इसलिए अगे मन से तन दो चीजें कट्ठी की। कहने लगे कल इनान सिमर प्रभ अपना, फिर की होएगा मन तन पै अरुगा। सिमर प्रभ अपना नाल मन अरोग होएगा, कल इनान नाल तन अरोग होगा। इसका इस इनान का संबंध तब तन नाल है, तन नूं अरोग करेगा। तन का इनान केवल तन नूं अरोग कर सकता है। गुरु ने इसके लिए बाणी दर एक ख्याल दे दिता। कहने लगी गुरुदेव तीरथ, गुरुदेव तीरथ है, मत समझियो किसी इस तरह से पत्थर का बनया हुआ, किसी दरिया के कंधे इशन करने का नाम तीर्थ है। गुरु कहने लगे गुरुदेव तीर्थ की अर्थ करने लगे। कई बार असं अन्वय नहीं करते, किथे विश्राम देना है वो नहीं करते। असं आखने अमृतसर, सतगुरु सतवादी, जो सतवादी सतगुरु है वह अमृतसर रहा, अमृतसर सतगुरु सतवादी, अमृतसर है ही सतगुरु जरा सतवादी, अमृतसर सतगुरु सतवादी, सतगुरु तो है ही अमृतसर। जितना ते कौआ हंस हुआ, एक ख्याल करो, उनका नतीजा यह है कि असी अंदर मन ईर्खा नाल, द्वैखता नाल, करप्शन नाल लिपड़े हुए मन ओवे जाके परिक्रमा विचों वापस ले आए, केवल तन का इशनान सरोवर विचरा लिया। गुरु ने आखिया अंतर मल निर्मल नहीं किया, मनुख तन के धोन का ख्याल आ गया। गुरु ने आख्या नहीं, ख्याल करी गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर। कहने लगे उस गुरुदेव तीर्थ च पानी केड़ा है, इशनान केड़ा है। कहने लगे गुरज्ञान मज्जन अपरंपरा, जरा ज्ञान मन प्रवृत्त करना, जो मन ने ज्ञान अपनाना ना गुरु को समझ लो मन का इशनान उदो होना। लगे गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा। लेकिन हो की रहा है, केवल तन धोप रहा है, तन इशनान कर रहा है, इशनान करके तन सोने सुनखे कपड़े पा के गुरुद्वारे भी आ गया है, मत्था कीतियां हुक्मनामा सुने है, चला गया है। वो हुक्मनामे विच जिहड़ा ज्ञान है ना, उनका मन नाल कोई संबंध नहीं। मनुख समझी फिरदा है मैं बड़ा खूबसूरत, बड़ा उजला हो गया, बड़ा पवित्र हो गया। गुरु कहते हैं गुरज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव तीर्थ हाथ ना लाते मैल, जे मल धोई है हाथ ना लागे मैल। कहने लगे अंदर अंदरों इशनान करने की लोड़ सी, मन नू पवित्र करना सी, पर होया इस दे उल्ट, मन दिसया ना तन दिस पिया, इनू तो कोई कुछ पिया। फिर जियो मैले बारो निर्मल, बारो तो निर्मल जियो मैले, तिन्नी जन्म जुए हारे, सारा जीवन इं तन नू ही धोंदा रहा, तन दे इशनान ही करता रहा, अठाठ तीर्थां ते इशनान ही करता रहा। तो सोचियो मैं बड़ा पवित्र हो गया। कहने लगे जे वह अठर तीर्थ लावे, जे वह द्वादश किला पजावे। हालांकि गुरु ने बाणी में आख्या, कहने लगे जरा सिमरन करने वाला मनुख है वो तो जिथे कदम रखते उठे अठाठ तीर्थ आ जाते हैं। अठ तीर्थ जे साध पग धरै तहां बैकुंठ, जे नाम उच्चरै। गुरु कहते वो ऐसा है, एडा वड्डा तीर्थ है गुरु कि गंगा जमुना गोदावरी सुरस्ती ते उद्यम करे धूर साधु पीता है। किले कुछ मैल भरे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की धूल गवाई।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ, ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਐਬ ਪਲ ਚਿੱਕੜੋ, ਇਹ ਮਨ ਮੀਂਦ ਕੋ ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਧ ਨੇ ਮੂਲ ਪਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਂਢਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਖਾਂਦਾ, ਕਮਲ ਦੀ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਂਢਕ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਚਿੱਕੜ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਰਾ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਵਰਾ ਆ ਕੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ 'ਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੇਂਢਕ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਬ ਤਨ ਚੁੱਕੜੋ, ਇਹ ਮਨ ਮੀਂਡ ਕੋ ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਪਾਈ, ਭੌਰ ਉਸਤਾਦ ਨਿਤ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਬੂਝੋ ਜਾਣਾ ਬੁਝਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਣ ਸੁਣਨਾ ਪਾਉਣ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੁਕਮਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਖਣ ਸੁਣਨਾ ਪਾਉਣ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਵਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਂ ਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੁਣੇ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖੜਕਦੇ ਨੇ, ਖੜਖੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੱਤੇ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕਈ ਤਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੜਖੜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂ ਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕੁਛ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਸੁਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ, ਆਖਰ ਸੁਣਨਾ ਪਾਉਣ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਮਨ ਰੱਤਾ ਮਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਪਰ ਬਾਣੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਮੱਜਣ ਅਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਧੋ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ

0: राम जपत सोहाए, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरु जी।